रजनी जय गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज नी जय दिल्ली अक्षरधाम महोत्सव नी जय जय जय हाथ जोड़ी ने अपने स्वामी श्री स्मृति साथे श्लोक नु गान करिए

सखी आटादार अनूप पियाजी पाघड़ी ए तो विसरे नहीं पर एक जीवलड़ा मही भड़ी तोरो फूल तणो नवरंग मोड़ीड़ा उपरे जोई धर्म कुंवर नु रूप मारा नेणा ठरे। आटादार अनूप पियाजी पाघड़ी आखलड़ी शरद सरोज रसीला लालनी देखी मनडू पामे मोह तिलक छबी भालनी। ए पदनी अंदर कहे छे रूड़ो राजे छे नलवट रे सखी आ